0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास
0: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
1: द न्यूज प्लस

0: फ्लोराइड पेंट टीचर सिलनेट दात में लगाए दात किरा लग्न बचाने निःशुल्क दंत चेक जांच गरिने दुखी को दात न दुखाई जरी बा सफा करने दात में तार लगने भर्ती तथा विदेश जाने का लगी विशेष खाल को दात भरने
1: थप जानकारी का लगी B&B डेंटल क्लिनिक घोराई 15 हॉस्पिटल रोड डीमा हल कुमारी बैंक अघाड़ी दांग शाखा नारायणपुर बुधौरा चोक संपर्क टेलीफोन नंबर 082-590-350 र मोबाइल नंबर 98-578-43-122 र 98-578-43-123
0: B&B डेंटल क्लिनिक घोराही 15 दांग।

0: रेडियो खाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास
1: रेडियो खाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा